फिर जदों जस होवे ता बड़े वरदान देंदे हां ते कोई अपजस कर देवे उसनू शराप देंदे हां। इसलिए जिथे वर शराप है उथे मेरी कल्पना है, साडा मन कल्पदा रहिंदा है। सानू सच दा राह दर्शाओ ते जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे चरणा विच निम्रता सहित उन्होंने बेनती की ना, भाई साहब गुरदास जी।

इस संसार सागर विच किते मैं डुब ना जावां, इस संसार दे पदार्थां विच किते रुल ना जावां, इस लई तू मेरी बांह पकड़। क्योंकि असी कमजोर हां, असी पकड़िए हाथ छुट जाएगा, इसलिए मोको बाहां दे बीठला मेरी पकड़ो जी बां। जिवें भाई साहब नंद लाल जी ने अरदास कीती, सतगुर प्याल प्याला मैनू दिल दे रंगन वाला, होमन दूर मुश्किलां सबे थीवे मन मत वाला। जे अपने दर घर दा नाम दे देवे सानू, तैनू की फर्क पवेगा। साडा मन भी मत वाला हो गया तां फिर संसार वल क्यों खचित होवेगा। जे साडी बांह तू फड़ दवे तां फिर संसार विच लुभाए मान करन वालियां वस्तुआं साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकनगियां। इसलिए कर कृपा, सदा पकड़ो मेरी बांह, ऐथे ओथे जिथे किथे जिउंदे मोए असी तेरे हां। हे निरंकार मेरी बांह पकड़ ले, कृपा कर।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

कर दे हाय हाय। ये मत समझ पाप दा बीज बोना तो बड़ा सौखा है, आज जदों किकर दा बीज वेखिए तो बड़ा मखमल वर्गा बड़ा कूला होंदा है, बड़ा सोहना होंदा है, पर जदों बीज बोइए तो जेड़ा फिर पौधा उगदा है वो कंडियां दा भरिया होया, जिथे हथ लाएगा कंडे ही कंडे हैं। पाप दा बीज तो बड़ा प्यारा लगता है पहला, पर जदों प्रफुल्लित होंदा ही ना फिर ये जीवन नूं कुंभी नरक बना देंदा है। इसलिए हजूर कहिंदे ने पापा तो डर, कोई चंगा कर्म करना है तो उसे वेले कर ले, जे मन विच फुरना होया किसे पाप करन दा तो सोच उसनू देरी पा, हो सकदा कोई तेरा चंगा कर्म तेरे सामने आवे तू पापा दे रस्ते तो हट जावे, इसलिए कह रहे हैं।

नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अति स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर ते नट नारायण महला चौथा पंजवा आदि लिखा है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा। नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गौण दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल, ले गुरपग रेन रवाल। गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना। इस शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई परमजोत सिंह जी। दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर। गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। उलाह नू मैं काहू न दियो। पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर काल।

तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत, अंत न पावत देव सबे। मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सतगुरु प्रसाद, इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. एंड व्हेन आई ट्रांसलेट गुरबानी इनटू इंग्लिश, आई ट्रांसलेट इट लाइक दिस. एक ओंकार, आई नो दैट आई एम वन विद गॉड एंड गॉड इज वन विद मी. सतगुरु प्रसाद, दिस इज माई ट्रू गुरुज गिफ्ट टू मी टू हैव दिस एक्सपीरियंस. The experience that I'm one with God is a gift from my Guru. So when you say Ekonkar Sadgur Prasad, Sadgur Prasad, Ekonkar, Ekonkar Sadgur Prasad, it's the most powerful thing because it reminds you who you are, that you are one with the Infinite, that everything is Prasad, everything is Guru's gift to you, even the painful things. It's all Guru's gift. And if anything that happens to you, you can say, Sadgur Prasad, what problem do you have? Huh? You don't have any problem at all.

गुरु नानक दा नाम जिन्हां ने भी रचना ते लियांदा फिर ओ जन्म मरण तो रहत हो गए से फिर गर्भाश न भरिया रे तारिया जहान लेहा अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनू तन के हा तिन जम नेड़ ना आया जिसने भी प्यार और सिदक दे नाल एक वेरा प्यार नाल कह दिता तन गुरु नानक जमदूत नेड़े नहीं आ सके गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नू तारदे होए एक जंगल विचों विचर रहे हन एक छोटा जिहा पिंड आया जिन्हां दा नेता प्रति ए कर्म सी कोई भी अभ्यागत कोई भी मुसाफिर उथों लंघ जावे पहला कतल करना फिर उस दी तलाशी लैनी अज गुरु नानक सच्चे पातशाह घट घट के अंतर की जानत ओ देख रहे सन भाई इन्हां कोलों सृष्टि नूं बड़ा दुख पहुंच रहा तारन लई हजूर आप उस जंगल विचों विचरदे होए पिंड विच आ रुके चोरां ने आके घेर लिया हजूर कहन लगे भाई की चाहुंदे हो के जो कुछ है इत्थे रख दिओ पर असी पहला कतल करदे हां ते बाद विच तलाशी लैंदे हां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या जो कुछ साडे कोल है वो तुहानू दे देंदे आ ते सानू जान दिओ आख्या ए साडा असूल ही नहीं चाहे कुछ भी ना निकले जिस मनुख नू असी वेख लिया है ना जेड़ा इत्थों लंघ गया वो जीउंदा नहीं जा सकिया उच्चारण करो श्री वाहिगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे फिर तुसी कतल तां कर ही देना पर एक साड़ी भी शर्त है साड़ियां देहां रुलदियां ना रहन थोड़ियां लकड़ियां कठियां करके ते सानू वायदा दियो भाई तुसी संस्कार कर दियोगे आख्या लकड़ां कित्थों कठियां करिए के हो सकदियां हन ते जे लकड़ां कठियां कर लिया अग कित्थों लियावांगे तां एक चिता बल रही सी गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उस चिता वल उंगली कर दिती भाई ओ अग बल रही है उथों अग्नि ले आओ ते फिर जो मर्जी है कर लेना कुछ चोर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे पास खड़ो गए भाई चले ही ना जान ते कुछ अग्नि लैन ले चले गए जाके की वेखदे हन जेड़ा मृतक शरीर जल रहा सी ना उस शरीर नू लैन वास्ते पहला ता जम गण आए हन उस दी आत्मा नू बड़ा मार रहे सन ते फिर उसी वेले राम गण आ गए फुलां दे विमान सज के आ गए ते आपस विच चर्चा कर रहे सन ओ राम गण कहन लगे भाई इस आत्मा नू हुण असी लै जाना है जम गण कहंदे हन इसने सारी जिंदगी कोई चंगा कर्म नहीं कीता कदी इस दे कदम सतसंगत वल नहीं गए इना नेत्रां नाल कदी इसने गुरु दा दर्शन नहीं कीता अपने इष्ट अगे कदी शीश नहीं चुकाया ए तां कुंभी नरक दा भागी है इनू तुसी किवें लै जा सकदे हो तां राम गणा ने आख्या तैनू पता नहीं सृष्टि दे मालक लोक परलोक दे मालक गुरु नानक सच्चे पातशाह ओ खड़ोते हन ते उन्हां ने इस चिता वल उंगली कर दिती है इसलिए हुण नरकां विच नहीं जाएगा स्वर्ग विच जाएगा चोरां ने जदों इह गल सुनी तां अखां भर आईयां कीते होए पाप सामने आ गए ते आके चरणां ते डिग पए नाल दिआं नूं वी दस्या भाई जिहड़ा प्रभु साडे पुन्नां ते तपस्या ते चंगे कर्म करके नहीं रीझदा अज ओ ईश्वर साडे पापां ते रीझ के सानू तारन लई आ गया सारे ने चरण पकड़े ते हजूर दे
ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੋਨੋ ਟਾਈਮ ਜਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇ

आप कराएं। ते हुन तुसी दावा करके कह सकते हो जो घरानू जाओगे ए दावा करके कह सकते हो कि किसी ने बैकुंठ नहीं वेख्या असी बैकुंठ क्यों।

संगतां पहुंच गई हैं गुरु के दरबार में। जदों दर्शन ड्यूटी कोल आईया संगतां ते हाथ जोड़ के सारियां संगतां खड़ियां हो गईयां। हैरो पाई पहला गुरु तो आग्या ते ले लेंगे। आग्या किवें लेंगे? वाह गुरु तेरी आग्या मंगण दा कितना सुंदर तरीका।

माता गंगा जी अपने महलों में चले गए ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह ओही पुराना कंबल अपने पावन शरीर ते ओढ़िया होया है ते जोड़ियां विच आके खलो गए। हजूर कहने गुरसिखो जाओ तुसी गुरु रामदास साहब का दर्शन करो ते तुहाडे जोड़ियां दी राखी मैं करांगा। प्रेरणा ले ली इस गल तो जे किसे गुरसिख दा जोड़ा सानू चुकना भी पवे ते मन विच नफरत आ जांदी। हजूर जोड़ियां विच खड़े हैं रुमाल लेके एक एक जोड़े नू साफ करी जांदे। संगतां अंदर गईयां बेबल हो गईयां। जिस गुरु नू लपण वास्ते जिस गुरु दे अगे मत्था टेकणा ओ ते सिंघासन ते विराजमान ने। बाबा बुड्ढा जी तो पुछिया कि बाबा बुड्ढा जी ने चारे पासे तके नजर पई नेत्रां चो जल आ गया आख्या ओ गुरसिखो जिस ते चरण परसन वास्ते आए हो ओ ते तुहाडे जोड़ियां च खड़ा है। ते आके बाबा बुड्ढा जी ने पुछिया पातशाह जोड़ियां विच की कर रहे हो। संगतां दर्शन करन वास्ते आई हैं जोड़ियां च की लब रहे हो। एक एक जोड़े नू पातशाह वेख रहे कहनन बाबा बुड्ढा जी थोड़ी देर होर ठहर जाओ मैं एक एक जोड़े नू चुक के तां वेख रहे हां मैनू किते गुरु नानक दा जोड़ा लब जाए। मैं सुनिया कि जदों साध संगत कट्ठी होके टुर पवे विच गुरु नानक भी टुर पैंदा है। मैं सुनिया कि साध संगत आई है ते उत्थे भी मैं इन्हां दी सेवा करन वास्ते तां गया सी कि किते सेवा करदियां करदियां किते गुरु नानक दे चरण भी मेरे हथ आ जा। मैं गुरु नानक दा जोड़ा ढूंढ लवां। हजूर दे नेत्रां च वैराग आ गए। अक्षय बाबा बुड्ढा जी सात संगत नूं कह दिओ थोड़ी देर होर रुक जा मैनू इस रस तों ना तोड़न गुरु नानक दा जोड़ा लब जाए ते मैं अपने आप ही हरिमंदर साहिब पहुंच जावांगा। इतनी निमत्ता जे इतनी निम्रता सी ते तवियां ते बह के भी क्रोध नहीं आया। जे इतनी निम्रता सी ताइयों ते पट्टा ने कह दिता कि धरण गगन नवखंड में जोत स्वरूपी रहो भर भन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख। जदों हजूर दे सिर ते गर्म रेत पै

सिमरन तो खाली ने गल्ला नाल आसमान ते चढ़ जांदे गल्ला नाल ही आसमान नूं थले ले आउंदे कहंदन के जिहड़े सिमरन तो खाली ने कबीर साहब कहंदन उन्हां तो सदा डरदे रहिए।

राम राम करदा है पर सारिया नूं ओ राम मिलदा नहीं। क्यों? सिर्फ राम राम कहण दे नाल राम नहीं मिलदा, उदों मिलदा है जदों मनों कहा जाए। राम राम कह लिया, सारा दिन झूठ बोलिया, ठगियां कीतियां, ओ राम किवें मिले? राम राम करन दा मतलब ए कि कोई माड़ा काम नहीं करना, किसे नूं सताना नहीं, किसे नाल धोखा नहीं करना, तां ओ राम मिलदा है। नहीं तां कोई फायदा नहीं राम राम कहण दा, जे मन विच सच नहीं, मन जुड़िया नहीं। साहब जी कहिंदे नहीं, कहण नूं तां सारा संसार कहिंदा, पर सारिआं नूं राम थोड़ा।

गुरु दे शब्द दे नाल गुरु दी कृपा द्वारा परमेश्वर प्राप्त होंदा है ते गुरु दे मिलन दे सदका ही परमेश्वर दी प्राप्ति होंदी है। गुरु तो बगैर उस परमेश्वर दी प्राप्ति

लोगन राम खिलौना जाना लोका ने राम नु खिडौना समझ ले। कोई बच्चा रुस जाए मिठिया मिठिया गल्ला करके बच्चे नु मना लेने। इसे तरह लोग रब नु समझदे ने, जो मर्जी करी जाओ जिन्ने मर्जी पाप करो झूठ बोलो, बस थोड़ी देर राम राम कर लांगे वाहिगुरु वाहिगुरु कर लवांगे ते बस साडे पाप खत्म। पर कबीर साहब कहंदे ने नहीं, ओ राम कोई खलौना नहीं बच्चा नहीं, जेड़ियां तुहाडियां गल्लां ते ओ खुश हो जाएगा।

जद तक मनो नहीं कहते। एक दुध वेचन वाली गुजरी नदी पार करके एक पिंड दुध वेचन आया करती सी। एक दिन वो दुध वेच के जद वापस तुरन लगी ता मंदिर दे विच बहुत सारे लोग बैठे सन ते कथा हो रही सी। मंदिर दा पुजारी कथा कर रहा है कि जेड़ा इंसान राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तो पार हो जांदा है। उस गुजरी ने कथा सुनी, मन विच ये गल वस गई कि जेड़ा राम राम कहंदा है ओ संसार सागर तो पार हो जांदा है। ए गुजरी कथा सुन के अपने घर नू वापस मुड़ी, जदू नदी पार करन लगी

पर जदू ए नाव दे कोल पहुंची बेड़ी दे कोल ता मन विच सोचदी है कि मंदिर दा पुजारी कह रहा सी जेड़ा इंसान राम राम कहंदा ओ ते संसार सागर तू पार हो जांदा है। ए ता छोटी जी नदी है जे संसार सागर आदमी राम राम कह के पार हो सकदा है ते मैं राम राम कह के ए नदी क्यों नहीं पार कर सकदी। मन विच भरोसा राम ते बजदी राम राम करदी ए नदी दे विच वड़ी ते देखदियां देखदियां तुरदी तुरदी नदी दे अध विचकार चली गई। पानी दे उत्ते इस तरह तुरी जांदी है जिवें के लोक धरती ते तुरदे ने और देखदे देखदे आराम आराम कहंदे आ ए नदी पार कर गई। हुण जदों आंदी है तां वी राम राम कह के नदी दे उत्ते तुरदी आंदी है जदों वापस जांदी है उदों वी राम राम कहंदी नदी पार कर लें। एक दिन मन विच ख्याल आया मैं राम राम कह के नदी पार कर लेनी है पानी उते इस तरह तुरनी है इस तरह तुरनी है पानी उते जिवें लोग धरती ते तुरदे ए राह मैनू मंदिर दे पुजारी ने दस्या है ते क्यों ना उस पुजारी नू घर बुला के ओनू रोटी खुआवा प्रशादा चुकावा ओदी सेवा करा। गुजरी तैयार होके घरों चल पई उसी तरह राम राम कहंदी नदी पार करके मंदिर जा पहुंची। बड़े प्यार नाल कहा पुजारी नू पंडित जी अज चलो मेरे नाल मेरे घर चल के रोटी खाओ प्रशादा छको। पंडित जी तैयार हो पे अगे अगे गुजरी ते पिछे पिछे ए पंडित जी चल पे। तुरदे तुरदे जदू नदी दे कोल आए पंडित जी कहन लगे उस गुजरी नू के बेड़ी नाव ता दूसरे पासे है तू केड़े पासे आ गई है। गुजरी कहन लगी पंडित जी बेड़ी दी नाव दी की लोड़ है जद राम राम कह के इंसान संसार सागर तू पार हो सकदा है ते फिर बेड़ी दी की लोड़ है ए नदी ता छोटी है राम राम कह के इथू भी पार हो जावांगे। पंडित जी कहन लगे ए थोड़ी हो सकदा के राम राम कही जाइए ते नदी तू पार हो जावे। गुजरी कहन लगी तुसी मेरे पीछे पीछे आओ तुसी ते कदू दे राम राम कहंदे हो मैं ते हुणे कहन लगी हां ते नदी पार कर जानी हां। कह के राम राम कर दी ए गुजरी नदी दे उते पानी दे उते तुरन लग पई। ए देख के राम राम कहंदे पिछे पिछे पंडित जी भी तुर पे। जदों थोड़ी दूर गए पानी डूंगा सी ते जाके गोते खान लग पे। जदों डुबन लगे ते उस गुजरी नू कहन लगे ए आप ते मरेगी नाल मैनू भी मारेगी। ओ गुजरी ते राम राम कहंदी नदी पार हो गई ते पंडित जी डुबदे डुबदे मसा बचे ते बड़ी मुश्किल दे नाल किनारे ते आके लगे। हुण सवाल ही पैदा हुंदा है राम राम ओ गुजरी भी करदी है ओ नदी पार कर गई राम राम ए पंडित भी करदा है पर ए डुबदा डुबदा बचिया क
कारण की कारण ही हुई जो गुरु अमरदास पातशाह कहते ने कि राम राम की सारा संसार कहते पर सारे नु मिलता नहीं मिलता किनू जेड़ा पखंड ना करे बल्कि मनो राम राम।

उस पुजारी ने ते राम नु खड़ौणा ही समझे, क्योंकि राम नु मन विच नहीं वसाया। उस गुजरी ने राम नु राम समझिया, वो नदी भी तर गई ते संसार सागर तो भी तर गई। हुण कबीर साहब कहंदे ने, मैं बौरा हो गया राम दे नाम दे नाल लग के। ओ बौरा नहीं जिन्हू लोग पत्थर मार देने,

लोग जेड़े ने ओ मेनू कहंदे ने कबीर बौरा है, कबीर बौरा है। क्यों? इस वास्ते कि ना ए पूजा करदा है ते ना ही ए फुल

कबीर बौरा है, ए कबीर बौरा है, ए पागल हो गया। पर कबीर सब कहते मैनू कोई पागल कब, मैनू कोई बौराना कब, मैनू कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे मन का दर्द मेरा प्यार मेरा आराम जानता है, मैनू दुनिया की परवाह नहीं।

कोई कहंदा रहीम वड्डा, पर गुरु साहब जी कहंदे ने अजीब गल तां इह है, इह लोक आपस च लड़दे ने रब दे नां ते, उहनूं राम कहो उहनूं रहीम कहो उह तां इक्को ही है, जिन्हों लोकी राम कहंदे ने रहीम कहंदे ने अल्लाह कहंदे ने उह तां इक्को ही है, इक्को जगह खलोता है, पर लोकी एवें आपस च

रहत बिना न सिख कहावे, रहत बिना जिड़ा ना बाणी पड़ी ना अमृत धारी ना रहत च पूरा। साहब जी कहंदे ने सिख किवें हो सकदे, ते रहत तो बिना ओ चोटा खावेगा दुखी होवेगा।

तू पाई जिन्ना मर्जी प्यार कर पर पराई औरत नू अपनी मां समान समझ जिहड़ा ये गल्ला मन्नेगा साहब जी कहंदे ने ओ असल विच रहवान।

गुरु साहबान ने सिख फुल सुनी सिख हाथ जोड़ के कह रहा पातशाह मैं किसी ने नहीं मारे साहब जी कह लगे नहीं सिखा दस तेनू डरन की लोड़ नहीं तू एक बारी कह तो सही कि तेनू किन्ने मारे कह लगा पातशाह मैं किसी को डरदा नहीं सिर्फ आप तू सवा परमेश्वर तू सवा मैनु किसी ने नहीं मारिया जे किसी ने मारिया भी है तो बादशाह उन्होंने खिमा कर दे पर साहबान गुस्सा सी इस सेवादार नु मारिया जिड़ा चौबी घंटे सेवा च रेंदे सिमरन च रेंदे साहबा ने कहा जिन्हें भी इस सिख नु मारे है वो अपने आप हाजिर हो जावे नहीं तो बहुत बुरी सजा दिती जाएगी जिन्ना ने सिख नु कुटिया उठ के खड़े हो गए आके चरना से डिग पे कह लगे पातशाह सानू खिमा कर दियो साहब जी कह लगे तुसा इन क्यों मारे है? कहन लगे महाराज इस करके कि तुसी जदों भी आंदे सी इस सिख नू गले लगांदे जिदे कपड़े भी गंदे हुंदे ने साडे वल तुसी देखदे नहीं इस करके असी इहनू मारिया कि इह मर जाएगा ते तुसी साडे नाल प्यार करो साहब जी कहन लगे भाई जे मेरी खुशी लैनी उस गुरु नानक दी खुशी लैनी ता सेवा करो मैं शरीर दी सुंदरता चंगे कपड़े देके खुश नहीं हुंदा मैं ता मन दी सुंदरता देखना इहदे कपड़े भावे मैले ने पर इहदा मन सुंदर ए सेवा करदा सिमरन करदा हुण उस सिख ने हाथ जोड़े जिनू कुटिया सी कहन लगा पातशाह कृपा करो इन्हां नू भी बख्श लो भावे इन्हां मैनू मारे पर इसे वास्ते मारे कि तुसी इन्हां नाल प्यार करो साहब जी कहन लगे हां तू कहना है तां इन्हां नू माफ कर देने हुण ओ जिन्हां ने सिख नू कुटिया सी हुण सेवा विच लग गए सिमरन विच लग गए साहबा ने कहा सेवा करो सिमरन करो तुहाडे ते भी ओ गुरु नानक दयाल होवेगा ते भाई जेड़ा ना सेवा करे ना सिमरन करे ओनू किवें राम मिलेगा कई झाड़ू भी मारनगे ते मन विच ख्याल होवेगा सानू कोई देखे आखे कि ये सेवा कर रहे एहो जी सेवा से ओ दयाल नहीं।